हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ू। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह, संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालो, आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 30 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 65 60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए आप हमारा प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने तक अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट की जरिए आप मेल भी कर सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी सुनाई देता है और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो की जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी घरों में, आपके मौतकार में। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सरिया भी आपने सुना। 7:00 प्रोग्राम में 13 मिनट व्यतीत हो चुका है, 3.5 मिनट ओवर सुबह हो चुका है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं देश विदेश में सभी सुनने वालों को भी स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और भजन यात्रा प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को भी अनहेल खुद मोर्फ गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर फॉलो करते ही रहना। अब की बार भजन जो पेश होगा सुरेश वतकर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, चले मिलकर सुनते हैं सुरेश वतकर की आवाज में ये सुंदर भजन।

सुरेश वत्कर, सुरेश वत्कर की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-22-66-66-11 है। कुछ सुनने वालों, बस अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी तार के जरिए हमें गुड मॉर्निंग कहा है। बस रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना और आपको भी शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीच की गए और रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल फोन की जरिए बस आप सुन सकते हैं। बहुत से सुनने वाले होते हैं जो मोबाइल टेलीफोन की जरिए मोबाइल फोन की जरिए हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले विनोद राठौर की आवाज में सुंदर भजन पेश किया जा रहा है आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में। आज जब भी

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम देख रहे हैं इस वक्त बहुत सी सुनने वालों देश विदेश में रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। प्रोग्राम भजन यात्रा रोजाना बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं। सभी को स्वागत किया जा रहा है। हर एक को बस खबर करते ही रहना कि हर सुबह प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में प्रकाश गांधी की आवाज में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सरिये प्रकाश गांधी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, गुड मॉर्निंग कहा है, खुद मूर्ख कहा है, उन सभी के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस पेश किया जा रहा है। लखबीर सिंह लाखा की आवाज में सुंदर सा शिव जी का आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बसबी इसकी गए लखबीर सिंह लाखा की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों यहां तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। अ जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बसपुर गांव में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया जी की ओर। श्रेया जी की आवाज में अब की बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज की प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और अतित्या नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में, सपने साजन की फिल्म का नाम

सुकुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अगली बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

संगीतों का प्रोग्राम की ओर है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम रोजाना पेश किया जा रहा है और हमेशा सुनने वालों बस गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। आपको हम ले चलते हैं पहला गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम एक महल हो सपनों का, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। किशोर कुमार की आवाज़।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। एक महल हो सपनों का, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं, ऐप भी आप कर सकते हैं।
1: तराना
0: मोहम्मद रफी, एक नारी दो रूप फिल्म का नाम।

गाना बस पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम एक नारी दो रूप, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना जो पेश होगा आई द फिल्म हीरा मोती। फिल्म हीरा मोती काफी पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म हीरा मोती उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई है। खासतौर पर सुमन कल्याणपुर एंड सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। एक प्रोग्राम जिसमें सिर्फ पुरानी नगमे पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-262-66-11। पुरानी नगमे का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दीदार। दीदार फिल्म का गीत मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

मेरे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। इस वक्त भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं राजन गिरधारी, उत्तरेख लाइट सरेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला है राजन गिरधारी, और इस वक्त रेडियो की बिल्कुल करीब में बैठे हुए हैं अपना गार्डन में। कहा कि खूबसूरत सुहाना मौसम है और गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ अपना गार्डन अपना टाउन में बैठे हुए हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम हाई वॉल्यूम के साथ बस सुनते हैं। राजन गिरधारी आपको भी शुभ पेश किया जा रहा है, लीजिए आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है माइटी मुकेश की आवाज में। राजन गिरधारी उत्तरेख लाइट सराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला जो है राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी माइटी मुकेश की आवाज में गाना को आप सुनते ही रहना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम में भी आपने सुना दुल्हा दुल्हन फिल्म का गीत माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई है। राजन गिरधारी जो अपना गार्डन में बैठ कर इस गर्मी सा मौसम में गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस प्रोग्राम को सुनते हैं, ये खास खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। राजन गिरधारी कॉफी चाय के साथ बस प्रोग्राम को सुनते हैं, ये खास खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। राजन गिरधारी बस

गार्डन में इस गर्मी सा मौसम में गर्मा गर्म कॉफी लेकर के हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, और वो है राजन बसंत। राजन बसंत किलोमबोर्ग शहर में हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। बस प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना अपना गार्डन में बैठकर, लेकिन सही काम आपने किया है कि आप ये प्रोग्राम भी गर्मा गर्म कॉफी के साथ बस सुनते हैं। तो किलोमबोर्ग शहर से राजन बसंत एक गाना मांग किया है माइटी मुकेश की आवाज में, चले मिलकर सुनते हैं।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना मांग करने वाला था किलोम्बोर्ग शहर का रहने वाला राजन बसंत। राजन बसंत ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया। अपना गार्डन में बैठकर टाउन में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी के साथ हमारा प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है भाई राजन बसंत, आपको भी शुभ दिन। और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनवालो हर एक कामुक आज के लिए आपकी फरमाइश हुआ इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए या मृत्यु समाचार के लिए हर एक

जीवन साथी एंड फिल्म साथी लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। और खास तौर पर दनहाग शहर की ये रहने वाली सिंथिया सुक्खू ये खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। रोथडम नोट की ओर हम आपको ले चलते हैं, वहां पर इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं शीला भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और शीला भी एक काफी खूबसूरत गाना मांग किया है लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर जी की आवाज में। फिल्म का नाम है संगम, हर दिल जो प्यार करेगा। तो लीजिए रोथडम नोट की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना।

हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। संगम फिल्म का गीत पेश की गई लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर जी की आवाज में। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुन बलू, जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे तो जल्द से जल्द तार कीजिए या तो ऐप कीजिए, इसलिए कि हमारा लिस्ट भरता जा रहा है और तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा और ये प्रोग्राम रोजाना 11 बजे तक पेश किया जा रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। और कभी कभी प्रोग्राम में भी आपको मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम रोजाना पेश किया जा रहा है और कभी कभी इस प्रोग्राम में आपको भी मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए, जिस तरह से आज आप सभी सुनने वालों को मौका दिया जा रहा है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम होगा, लता जी की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना। और स्टूडियो की ओर तार किया है फोर्ट ब्यूरक शहर से सोनिया ने तार किया है। सोनिया को भी हम बधाइयां देते हैं, कल सोनिया के जन्मदिन थे, खबर मिला भी अभी। बधाइयां ही बधाइयां भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। तो सोनिया लीजिए आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है।

फिल्म का गीत पेश की गई किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में, कोरा कागज था ये मन मेरा। खासतौर पर दीमन शहर या कहिए लिस की ओर देखा जाए तो उत्रेख शहर का रहने वाला विजय, विजय ये गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। विजय आपके तार के लिए भी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको मालूम होना चाहिए कि आने वाले महीना में एनन फिर तैयार होगा, जबकि रेडियो SBS का प्रोग्राम उत्रेख शहर के अंदर में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। एनन फिर तैयार शुरुआत से लेकर के आज तक ये प्रोग्राम को हम चला रहे हैं, पेश कर रहे हैं सभी सुनने वालों के लिए। और इन दिनों दूर दूर देशों में ये प्रोग्राम इंटरनेट के सहारे सुनाई देता है। हॉलैंडिस के बीच में और प्रोविंसी साउथ होलैंड में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो आने वाले महीना में एनन फिर तैयार होगा रेडियो SBS का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है। नातूलकों से रोते मेरक नाम SBS हॉलैंड में हर एक की जुबान पर होते हैं, यहाँ तक कि गोरे लोग की जुबान पर भी SBS होते हैं। लाइव फन आउट हार्ट फन नीदरलैंड, फन आउट मेड इन नीदरलैंड रेडियो SBS। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, और लिस्ट के ओर देखा जाए तो हम आपको ले चलेंगे इंग्लैंड की ओर, इंग्लैंड की ओर। और वहां पर हमारा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम भी सुनते हैं, नाइला नाइला भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और अभी अभी ऐप द्वारा तार किया और एक गाना की गुजारिश किया है आज के प्रोग्राम में लता जी की आवाज में। एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में फिल्म एक महल हो सपनों का, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

एक महल हो सपनों का, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। इंग्लैंड से नैला ये खास गाना आज के ये प्रोग्राम में सुनना चाहती थी और इसी तरह से रेडियो वेस्ट में इसकी सर ये बस पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। देश विदेश में सुन वालों बस रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम सुनते हैं। फ्राइडे 28 अगस्त, शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और सुन वालों आपको खबर किया जा रहा है मुस्कुराता दुकान के पास तनहक शहर के अंदर में हजारों खूबसूरत से खूबसूरत रक्षाबंधन आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है। तो मुस्कुराता दुकान के पास जरूर आप तशरीफ फरमाइए दनहक शहर के अंदर में जब ये आप रक्षाबंधन खरीदना चाहेंगे।

मिला है कि रक्षाबंधन भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 1 यूरो पर स्टुक। हाँ, 1 यूरो में 1 रक्षाबंधन यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है। मुस्कुराता दुकान ऑल इंडिया के अंदर सबसे बड़ा दुकान होते हैं जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े कपड़े के साथ गहने जूता बदांकेस और तरह तरह की सामान यहां पर सस्ती दामों में आप खरीद सकते हैं। और जब भी आप कहेंगे कि रेडियो SBS आपको भेजा है तो एक्स्ट्रा कोर्टिंग आपको कटौती दिया जाएगी। कारल रोस्ट्रात नंबर 4 देनहाग शहर के अंदर में है। मुस्कुराता दुकान जहां पर सस्ती दामों में रक्षाबंधन आपको दिया जा रहा है। चले प्रोग्राम में आपके बाहर एक गाना पेश किया जा रहा है, लेकिन गाना को मांग किया है नलिनी गाना को मांग किया है, और पता नहीं कि नलिनी कौन सा शहर से ये गाना को मांग किया है, कहां पर नलिनी रहती है, कौन सा शहर में, लेकिन नलिनी ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम 7-7।

उसी फिल्म का गाना नलिनी ने आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। Het is inmiddels 8 minuten voor half 11, यानी कि 8 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजने में, और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और अभी अभी खबर मिला है कि नलिनी सुतमेर शहर में रहती है। सुतमेर शहर से नलिनी फिल्म साथ साथ का ये गीत आज के प्रोग्राम में मांग किया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुतमेर शहर में सुनते ही रहना, वहां पर भी हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए बस सुनाई देता है आपकी मौतकार में, आपके घरों में। अलकमार शहर में रहती है कमला, और कमला एक खास गाना मांग किया है, रोटी कपड़ा और मकान, उसी फिल्म का गाना लता मंगेशकर मुकेश और साथियों के आवाज में। तो चले अलकमार शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार का फिल्म है। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आलकमार शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी

0: पूरे सभी सुनने वालों के लिए कमला आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आलकमार शहर के अंदर में सुनते ही रहना। 030-262-6611 हमारा स्टूडियो का तारगी नंबर है और इसी तारगी नंबर पर हमेशा भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी आप कर सकते हैं।
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daardoor heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein doe je er een kwartier langer over.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: सुनबलवाद बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। 30 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज हॉलैंड देश के अंदर में गर्मी सा मौसम है। टेम्परेचर 29 डिग्री बस होने वाले हैं। हो सकता है सुनने वालों जहां पर भी प्रोग्राम सुनते हैं हॉलैंड देश के बाहर, यही सोचते होंगे कि हमारा देश में तो और भी गर्मी सा मौसम है। हॉलैंड देश के अंदर जब 30 डिग्री होते हैं, देर तक खराब होते हैं, तो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा है। फिर भी स्टूडियो के अंदर ठंडी ठंडी सा है और हम आपको ले चलते हैं आपकी गाना की ओर। फिल्म का नाम होगा अदालत, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा और गाना आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। अदालत फिल्म का गीत अब की बार पेश होगा तुमसे दूर रहकर। इंडिया भारत देश अलीगढ़ से गाना को मांग करने वाला है धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान गाना को मांग किया है, तो चले धर्मेंद्र चौहान का मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं। फिल्म का नाम अदालत।

फिल्म का गीत पेश किए गए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, तुमसे दूर रह के। इंडिया भारत देश अलीगढ़ से खासतौर पर धर्मेंद्र चौहान ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। धर्मेंद्र चौहान आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इंडिया भारत देश अलीगढ़ में बस सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा दमाईटी मुकेश की आवाज में, या कहिए किशोर कुमार की आवाज में एक गाना पेश होगा, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगा।

0: और गाना मांग करने वाला लिस्ट पर देखा जाए रोटरडम शहर से हारोल्ड, हारोल्ड ने तार किया है और किशोर कुमार के आवाज में गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम अमर प्रेम।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम का गीत पेश की गई है। आज की ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में अभी आपने सुना। रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आज रोमित है, अपना मांगे हुए गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS की सरिये जो पेश की गए। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और ऑल इंडिया के कोने कोने में, दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों ये प्रोग्राम हमेशा और हमेशा सुनते हैं। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 और 23 अगस्त मिलन समर फेस्टिवल होने वाले है इस साल साउथ पार्क देन हाग शहर के अंदर में। और आप सभी को खबर किया जा रहा है शुक्रवार 21 अगस्त लाइव ऑन स्टेज रहेंगे त्रिनिदाद का वही मशहूर गाने वाला रेमोन राम नारायण अपना फुल बैंड के साथ, बैंड दिले नादान के साथ। हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल .nl उसी वेबसाइट पर जाकर आप अपना टिकट को खरीद सकते हैं और सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है क्राम फरहूर के लिए।

काफी पुरानी फिल्म का गीत की ओर 1961 का फिल्म 1961 का फिल्म फिल्म का नाम ओपरा हाउस। मुकेश और लता जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे देखो मौसम क्या बहार है। मार्सन की रहने वाली अनीता जियालाल की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों के लिए। ये गाना बस पेश कर रहे हैं देखो मौसम क्या बहार है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म ओपरा हाउस, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मुकेश और लता जे के आवाज में जो आप सब ही सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। मार्सन शहर की रहने वाली अनीता जियालाल, अनीता जियालाल ये खास खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सब ही और सब ही सुनने वालों के लिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबी

सुन वालों आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश होगा आज के प्रोग्राम में।

करने वाली है और खास तौर पर प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। देन हाँ शहर की रहने वाली मालती ने तार किया है स्टूडियो की ओर और मुझसे गुजारिश किया है ये गाना बस प्रोग्राम में पेश करने के लिए। फिल्म का नाम प्यार किए जा, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में। और ये गाना आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना भी।

0: फिल्म का नाम महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई और दनहाक शहर की रहने वाली मालती की खास मांगी हुई गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश की गई। कल शुक्रवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। सभी सुन वालों जो तार किया, ऐप किया और गाना को मांग किया, हॉलैंड देश से, हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश से सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम रोजाना पेश किया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और कभी कभी प्रोग्राम में आपको भी मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए। सुनवालो, आपकी फरमाइश हुआ है इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रिक्लाम हुआ, या भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आपके घर पर कोई भी दुख है, गमी है और आप मृत्यु समाचार, मौत की खबर देना चाहेंगे, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं तार द्वारा, मेल द्वारा, या तो हमारा रेडियो SBS का ऐप की जरिए भी। ये तीनों की तीनों 24 घंटा लगातार आपके लिए होता है। फिर पैरदाख हमारा तार का नंबर, दफ्तर का तार का नंबर, मेल और रेडियो SBS का ऐप आप सभी के लिए होता है। जब भी आप चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0325656066। मेल आपको करना है या तो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप करना है तो जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl। चले यहां से खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं, खबरें के बाद बस हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Hold on one another. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud, de muziekbos van Trinidad, Raymond Ramnarijn

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 13 मिनट ओवर 14 मिनट वेटेड हो चुका है 11 बजकर। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम और धूप का मौसम। टेम्परेचर आज का मेरा टेम्परेचर तकरीबन 29 डिग्री 29 ग्राड होने वाले है, 29 ग्राड होने वाले है। चले प्रोग्राम में गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म सीता और गीता उसी फिल्म का एक गाना।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और अलका जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है फिल्म फरीब। कुमार सानू एंड अलका प्रोग्राम में होगा आंखों से।

रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में।

प्रोग्राम में भी इसकी गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई इतनी सी बात है गाना का बोल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रेम अगन, ये बात फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

सरगम और सुरेश वटकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में सोनू निगम एन श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

जनाब, उस प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.net। चले प्रोग्राम में सोनू निगम, महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में एक फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रिक्वेस्ट भी इसकी जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

राम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रभा के आवास में। द फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

भी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम

से खयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा कुमार सानू।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है मोहम्मद रफी की आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। असरों मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है और रेडियो SBS की जरिए जो सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। लता के बाद मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

गाना बस भी इसकी गई है। अब की बार मुकेश जी की आवाज में फिल्म कहानी किस्मत की है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश की आवाज में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कहानी किस्मत की। चलिए आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आज की इस पुरानी नखमे की खास प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

The Nightingale of Asia, आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-2565-6060। चलिए प्रोग्राम में किशोर एंड लता जी की आवाज में

मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। आई द फिल्म कर्स 1980 का फिल्म 1980 का खास फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। मुकेश एंड लता अब की बार प्रोग्राम में। ये शमा ये खुशी बोलो जी बोलो जी। मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

ये शम ये खुशी, बोलो जी मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नखमे, पुरानी फिल्मी गाने आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। चलिए प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सभी हिट गाने, सभी हिट सॉन्ग्स इसी रेडियो स्टेशन की जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है, संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार होगा, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में

0: किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश की गए गोरी ओ गोरी। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है। किशोर कुमार के बाद मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
2: अरे जा जा
3: जा जा जा

चुमी जुल्फे शराबी नैन के प्याले के दिल का हाल कह देते हैं दोनों ये हिम्मत वाले। नहीं डरते किसी से जीत कर भी हारने वाले, कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले। जा अरे जा जा जा रे जा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमा, दिस इज यू आर जे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा en is gezongen door Sunidhi Chauhan en Alka Yachnik. Gaan we dan verder met uit de film Dil Dhadakne Do, het liedje Gala Guria.

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिनिए न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दोर आशा भोसले एंक वाम आयो दे फिल्म भावना. आयो दे फिल्म हाल्फ गर्लफ्रेंड इस फोगंत लीजिए फिया रादियो SBS गजंग दोर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आरती बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वास आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। हाँ तो फिर अगर मैं आया तो फिल्म लव यात्री इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इसको सुनो दर आतिफ असलम तेरा हुआ।

Hi, क्या थे वो दिन. बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंदोर तुषार जोशी. गजोंदोर अलका याचिनी कम तुत फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर. द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कौन क्या हुआ तुझे.

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,